0: Anthropology Lab, Beth N.
1: Escuchar las historias para comprenderlas.
2: Anthropology Lab के इस विश्लेषणात्मक कार्यक्रम में हम एक बेहद गंभीर और सीधे विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है माइनेबल सेल्फ, यानी एक खदान के रूप में हमारा अपना वजूद। ये कोई भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी पहचान के बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक मूल से जुड़ा हुआ मामला है। तो बिना देर किए सीधे अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। प्रख्यात मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुरई के माइनेबल सेल्फ का वास्तव में क्या अर्थ है? जरा सोचिए, जब एक इंसान के पूरे सामाजिक जीवन को प्रोफाइल, स्कोर और कैलकुलेबल यानी गणनीय प्रतिनिधित्वों में बदल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ असल में क्या होता है? एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, हम यहां एआई को कोई जादू या अपने आप चलने वाली शक्ति नहीं मान रहे, बल्कि हम उन सामाजिक, आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को देखेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को चला रही हैं। इस विचार तक पहुंचने का एक पूरा वैचारिक सफर रहा है। अप्पादुरई की अकादमिक यात्रा को देखें तो 1986 में उनकी एक प्रसिद्ध किताब आई थी, द सोशल लाइफ ऑफ थिंग्स। इसमें उन्होंने बताया था कि समाज में निर्जीव वस्तुएं कैसे घूमती हैं और कमोडिटी बनती हैं। फिर 2004 में उन्होंने कैपेसिटी टू एस्पायर यानी इंसान की आकांक्षा करने की क्षमता को सामाजिक रूप से निर्मित बताया। 2015 में बैंकिंग ऑन वर्ड्स के साथ यह विचार और भी गहरा हो गया और अब हम माइनेबल सेल्फ तक आ पहुंचे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो प्रक्रिया कभी सिर्फ निर्जीव वस्तुओं पर लागू होती थी, अब इंसान खुद उस कमोडिटी की यात्रा का हिस्सा बन गया है।
3: अब यहां सेल्फ या स्व का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार अप्पादुरई का मतलब किसी इंसान के भीतर छिपी हुई मनोवैज्ञानिक गहराई या सिर्फ पर्सनल डेटा से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने सामाजिक संबंधों से बना है। माइनेबल सेल्फ का असली मतलब उस सामाजिकता से है जिसे आसानी से कहानियों में ढाला जा सके, जिसे साफ साफ देखा जा सके और सबसे अहम बात, जिसकी बाकायदा गणना की जा सके।
4: इसी सिलसिले में बैंकिंग ऑन वर्ड्स से एक बहुत ही दिलचस्प शब्द निकल कर आता है, डिविजुअल। हम हमेशा से व्यक्ति को एक इंडिविजुअल यानी अविभाज्य इकाई मानते आए हैं जिसे बांटा ना जा सके, लेकिन इन आधुनिक प्रणालियों ने इंसान को डिविजुअल बना दिया है। इसका मतलब है टुकड़ों में बटा हुआ इंसान, व्यक्ति अब कोई एक संपूर्ण इकाई नहीं है, बल्कि वो क्रेडिट जोखिमों, स्वास्थ्य स्थितियों और अलग अलग गुणों के आधार पर पूरी तरह से विभाजित हो चुका है।
5: और ये विभाजन हमें एक बेहद चौंकाने वाले निष्कर्ष पर ले जाता है। अप्पादुरई बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज मी, यानी मुझ जैसा या मेरे जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये प्रणालियां इंसान को लोन लेने वाले, एक मरीज या एक खरीदार के रूप में अलग अलग ऑपरेशनल वर्जन्स में बांट देती हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी अंतिम प्रक्रिया नहीं बचती जो इन सारे हिस्सों को वापस जोड़कर फिर से एक पूरा और सुसंगत इंसान बना सके।
4: यहीं से हम एल्गोरिदमिक सेल्फ के विचार से टकराते हैं। ये एक ऐसा स्व है जिसे लगातार बाइनरी यानी शून्य और एक में बदला जा रहा है, विरोधी युग्मों में व्यवस्थित किया जा रहा है और एक तार्किक गणनीय इकाई में तब्दील किया जा रहा है। अब यहां रुककर ये सोचना लाजमी है कि इंसानी भावनाओं का क्या होता है, अनुभव के उन हिस्सों का क्या होता है जिन्हें आसानी से नंबरों में नहीं बदला जा सकता। स्रोत इस बारे में कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
6: खैर, अगर हम एक खदान बन चुके हैं तो इस अंतहीन माइनिंग या निष्कर्षण की सामग्री आखिर है क्या? ये कोई मासूम तकनीकी प्रक्रिया नहीं है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म बस लोगों को आपस में जोड़ रहे हों। ये पूरी तरह से एक आर्थिक संबंध है, हमारी दोस्ती, हमारा परिवार, हमारा प्यार, काम, सेहत, जोखिम, यहां तक कि हमारी आकांक्षाएं और कहानियां, यही सब इस माइनिंग का कच्चा माल हैं। जीवन की हर गुणात्मक विशेषता अब निष्कर्षण के लिए पूरी तरह तैयार है।
7: अब सवाल उठता है कि इस खदान के भीतर प्रवेश कैसे मिलता है। सच कहें तो हमारी कहानियां ही इस खदान का एक्सेस कोड हैं। हम जिस तरह खुद को प्रस्तुत करते हैं या अपना सेल्फ ब्रांडिंग करते हैं, वो अब सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं रहा। हमारी निजी कहानियां अब ऐसी सामग्री बन चुकी हैं जिन्हें एल्गोरिथम आसानी से अलग अलग श्रेणियों में बांट सकता है और जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारी जिंदगी की कहानियां अब बाजार में घूमने वाली संपत्तियां बन गई हैं।
2: ये पूरी मशीनरी बड़े ही चक्रीय ढंग से काम करती है। इसका पहला कदम है जीवन की गुणात्मक विशेषताओं का निष्कर्षण करना। दूसरा कदम, उन्हें नंबरों, क्रेडिट स्कोर, प्रोफाइल और एक्चुरियल कैलकुलेशंस यानी बीमांकिक गणनाओं में बदल देना।
3: और तीसरा कदम, वे नंबर वापस हमारी जिंदगी में लौटते हैं, लेकिन इस बार ऐसे कठोर फैसलों के रूप में जो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख सकते हैं।
8: इसी पूरी व्यवस्था को डिजिटल पर्सनहुड का नाम दिया गया है। ये किसी इंसान की जिंदगी का वो आंशिक, काम चलाऊ और गणनीय संस्करण है जिसका उस इंसान की असली जिंदगी पर गहरा और वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मजे की बात यह है कि इस डिजिटल संस्करण को असली इंसान की पूरी गहराई या जटिलता को दर्शाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही काफी है कि यह तय कर सके कि किसी को लोन मिलेगा या नहीं, या भविष्य में उसके सामने कौन से अवसर आ सकते हैं।
3: अब जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से विकास हो रहा है जिसका लक्ष्य मशीनों को ज्यादा से ज्यादा इंसान जैसा बनाना है, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया भी चल रही है। इंसान वास्तव में खुद को मशीनों के लिए ज्यादा पठनीय या मशीन रीडेबल बनाना सीख रहा है। सही प्रॉम्प्ट्स लिखना, खुद को एल्गोरिदम के हिसाब से ढालना, ये सब जाने अनजाने में इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
8: यहां एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है, यह निष्कर्षण कभी भी समान रूप से नहीं होता। इस खदान का अपना एक अलग भूगोल है जो वर्ग, लिंग, भाषा और हमारे औपनिवेशिक इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कई संस्थाओं और इंसानों का अदृश्य श्रम काम कर रहा होता है। कुछ खास तबकों को पहले निष्कर्षण योग्य बनाया जाता है, जबकि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाला जो बुनियादी ढांचा है वो हमेशा हमारी नजरों से ओझल रहता है।
3: और ठीक यहीं पर फेटिशिज्म का पुराना सिद्धांत एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आता है। आज एक क्रेडिट स्कोर या एल्गोरिदम से बनी कोई प्रोफाइल हमें व्यक्ति की स्वाभाविक या प्राकृतिक विशेषता लगने लगी है, लेकिन यह फेटिशिज्म उस पूरी सामाजिक मशीनरी, उस पसीने, उस अदृश्य श्रम और उन सभी संस्थाओं को छुपा देता है जिन्होंने वास्तव में उस स्कोर को पैदा किया है। वो स्कोर खुद को एक स्वायत्त सच्चाई की तरह पेश करता है, जबकि असलियत उसके पीछे छिपे श्रम और संबंधों में होती है।
9: तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही ठोस सवाल सामने आता है। किसी इंसान को पूरी तरह से गणनीय बनाने के लिए आखिर इंसान होने का कौन सा हिस्सा पीछे छोड़ना पड़ता है? इस वैचारिक पहेली पर और गहराई से विचार करने के लिए AI थ्रोपोलॉजी लैब पर पूरी नोट पढ़ें। इसका वेब पता है aithropologylab.org/hi/notes/theselfasamainapadurai-bilfeld। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
10: Islas.